कसम कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं ज्यादा कहीं कम हर्रम तर्रम दुनिया के कैसे कैसे हम कहीं ज्यादा कहीं

मंजिल की वो तेरी मंजिल की तस्वीर बन जाऊंगी। मंजिल का पास है, मिलने की याद है, तू क्यों उदास है।